कोई भी रसना बांझी ना रहे, क्योंकि गुरु नानक दे करो जे कोई दाता मांगदा है ते दाता मिलदियां ने, दाते वालियां नूं दाता भी मिल जांदा है। ब्रह्म ज्ञानी बाबा नंद सिंह जी बड़ा कीमती वचन करदे सन, कहिंदे ऐ गुरसिख चात मार, धियां पुत्र मंगे ओह भी मिल गया, धन दौलत मंगिया ओह भी मिल गया, सोहणे कारोबार लई अरदासां कीतियां ओह भी मिल गए। भी ऐ गुरसिखा जे किते तू गुरु नानक मंगिया हुंदा तेनू गुरु नानक भी मिल जाणा सी। आओ भई झोली विछा के मन जोड़ के

0: भरण सकै महिमा जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो तुम कथा सुधारी एक मन पुरख ते आए बरदाता संत सहार सदा बखियाता तास चरण ले हृदय बसावो तव परम गुरु नानक गुण गाओ तास चरण ले हृदय बसावो तव परम गुरु नानक गुण गावो सन्मान योग गुरु प्यारी साध संगत समूह माई पाई गज के फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कुछ अजी कहिंदे हन जिस नूं किसे कम दा चज ना होवे तरीका ना होवे जीवन दा ढंग ना आउंदा होवे गुरु की मर्यादा विच चलण तों प्रतिकूल जिहड़ा इंसान है उस दा नाम कुछ अजी भाव खोटे अवगुणा नाल भरी होई ते शुभ गुणा तों खाली मंज कहिंदे हन मैनू हे वाहिगुरु मैं तां मंज
1: मंज कुचजी अमावन डोसड़े
0: मैं कुचजी हां मैनू मत नहीं है मैनू अकल नहीं है जिवें भाई गुरदास जी लिखदे हन होए अपराधी गुणे गार हां बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हां पर घर जो हंदा इस शब्द विच वी अवगुण गिने हन के इन्हां वीआं अवगुणा दे मैं संयुक्त हां हे प्रभु मेरे ते दयालता करो इन्हां अवगुणा तो मैनू बचा लवो होए अपराधी गुनहगार हां बेमुख मंदा चोरी आर जो आर हां पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा विश्वास घाती आ किरत कण मैं को न रखंदा सिमर मुरीदा ढाडिया सतगुर बखसंदा वी अवगुणा नाल मैं भरपूर हां पर तेरी शरण विच आया हां। संत शमेर सिंह जी ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जीवन लिखिया होया पिछले दिनी पुस्तक छप गई है। उन्होंने अपनी वलों निम्रता सतगुरु जी के चरणों विच अपने अवगुणा की लिस्ट इस प्रकार रखी है। कामी अकुटल कूर कपटी अकिरत घणी कटु काल ही कलंकी कली काल के अधीन हूं। हे कलगीधर पिता मैं टेढ़े मन वाला हां मन विच मेरे कपट है कीती नू जानदा नहीं इस वास्ते अकिरत घण हां। कामी अकुटल कूर कपटी करित कणी कटु काल ही कलंकी कली काल के अधीन हूं। खोटो खाल खामी खूब खंडत खराब खरो खालक न जान्यो खल्यो खाल न प्रवीन हूं। गाफल गुसैल गम रूरी भर्यो ज्ञान हीन गामी गण्यो अवगुनी गुनान न मैं पीन हूं। घर के न काम को आराम को न नाम कछु। राम मोहे तारो तब जानो नाथ दीन हो। हे वाहिगुरु, जे मैनू मेरे वर्गे पापी नू तारो तां समझा के तुसी गरीबा नू नवाजन वाले हो। गुरु नानक देव महाराज जी अर्ज कर रहे हने अकाल पुरख दे चरणा विच के मैं कुछ अजी हां। उत्तम भगते दा ही ढंग है, अपने ते गल लै के दूजियां नू सिखिया दिंदा है। किन्नी क कुचजी हां, अमावन डोसड़े, मेरे विच डोसड़े मैने दोष गुनाह पाप, अमावन मैने म्योंदे नहीं हन, पाप बहुते गुनाह हन मेरे विच, जिन्हां गुनाहां नू मैं वर्णन करके नहीं दस सकदी। जे तास मंद सागर नीर भरिया ते ते औगुण हमारे।

हे परमात्मा मैं तेरे दर दा भिखारी हां मंगता हां आरता मैंने मंगता जिथे आरता दा अर्थ दुखी है उथे इसका अर्थ मंगता भी है। भगत तन्ना जी शब्द आरंभ करते हुए कहते ने गोपाल गोमन कृतमी पाल मैंने पालना करने वाला सर्वशक्तिवान।

शिम्बरस वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुन जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू ले जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये बचन अपने पले बनांगे ता लोक परलोक

जिस तरह कोई मूर्ति की पूजा करता है, इस तरह मैं उसनु सामने बैठा के ओदी पूजा करा, ओदी सेवा करा, मैं भी ओदे दर्शन करा।

मन विच हौमे आ जाती है और भगती दे नाल हौमे कटी जाती है। तू ए वरते ले लिया, ओ नारायण तेरे घर पुत्र बन के जन्म लैण, पर बाल के पहचानन दा वर मंग।

नारायण प्रगट होवेगा मैं पहचान नहीं सकांगा, कभी भी नहीं पहचानांगा। ता सिख्या दाता कहन लगे, बालके अगर तू भगती करता ते उन्हां दे जन्म लैंदिया तू पहचान लेना सी, पर तू भगती नहीं कीती, पहचानेगा हुण भी

इस सन्यासी पिता मेहता का लू ऐ बालके, त्वाड़ा भी दूसरा जन्म होवेगा। हुण तुसी सन्यासी हो, दूसरे जन्म विच गृहस्थी होवोगे, फिर त्वाड़े कार्य हो नारायण आप प्रगट होवेगा।

मेरे घर प्रगट होया, उठ के खड़े हुए, अपने आप नु कहंदे ने चल मना, तेरे घर नारायण प्रगट होया है, चल के नमस्कार कर। मैता कालू जी उठे, धन गुरु नानक साहब दे कमरे वल चल पे, ते की देखते दे? धन गुरु नानक साहब बचपन की उम्र कमरे विच दीवा नहीं बलदा, पर प्रकाश है,

मैं अरदास की थी, मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरे घर पुत्र बन के जन्म ले, तू मेरी गोद विच खेड़िया।

तेने पहचान ना सके। और एक बारी ऐ दाता वीर रुपया दे बदले मैं तेरे मुंह ते चपेड़ भी कट मारी पर तू उफ ना कीती। ऐ दाता मैनू बख्श लै ए कहंदे होए पिता मेहता कालू। धन गुरु नानक साहब दे को

एकदम उठ के खड़े हो गए और तन गुरु नानक साहब ने अपने पिता दियां बाहां पकड़ लिया, अपने पिता नु गल दे नाल लगाया ते नाल ए कहा, पिता जी ए नानक तुहाडे पैरां ते मत्था टेके, ए तां हो सकदा है

ओ माता पिता नु दुख दे, ओ माता पिता नु ठोकरा मारे, ते बच्चियां दा फर्ज। जन्म देने वाले माता पिता दाते हैं, दाते दा शुक्र किया जाता है, दाते दी

अपने माता पिता की सेवा करनी, माता पिता का आदर मान करना। जेड़े बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, वो ये समझ लैन उन्हां दा दान पुन भी सफल नहीं होता। जेड़े माता पिता की सेवा नहीं करते, उन्हां दा कीता होया दान पुन तीर्थ यात्रा पाठ पूजा भी सफल नहीं होते। माता पिता की सेवा रब की सेवा के बराबर है। इस करके मापिया की सेवा करनी, अपने घर विच वड्डियां दा आदर मान करना। पर देखते हैं एक मां बाप अठ धिया पुत्रां नूं पाल सकता है, पर जब उही माता पिता बुढ़े हो जाण ते ओ जड़े अठ धिया पुत्र ने ओ एक माता पिता की पालना नहीं कर सकते। किन्नी अजीब गल है, एक मां बाप इन्ने बच्चे पाले ते जद बच्चे वड्डे हो जाते ने ओ फिर माता पिता नूं कुछ दे नहीं सकते। अपने धिया पुत्रां दे हजारां रुपए खर्च कर देंगे, पर जद बुढ़े माता पिता कुछ मंगण ते फिर नूं पुत्र गुए कहिंदे ने पिता जी हाथ तंग है। कैसा

ताकि फिर खुली सतगुरु कहने लगे आ गए मैनु यकीन सी कि तू आवेगा। अज कुछ भाव घटाया है कि नहीं, कीमत घट की है कि नहीं? आखन लगा मालिक धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह कीमत तो कल वाली रखी है लेकिन एक रैत रख दी है केड़ी। महबूबा गए कूचे अंदर मैं दिल में चिड़ जल था। नंदलाल कहने लगे अपनी विथिया।

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसे लिए आख्या, कबीर कुकर राम तो मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जे खिंचे पह जाओ। जिस वेले उसने अपने आप नु सग कहा, कुत्ता कहा, आखन लगा तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोविंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हाँ। नंद लाल उसे सुन ली तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नु इन्ने प्यारे हुंदे ने कि छेज ते चढ़ जांदे हो, बाबा मैनू हाले ये अवसर प्राप्त नहीं होया, ये मौका नहीं मिले कि मैं गुरु गोविंद सिंह जी की छेज ते बैठ मा। नंद लाल आगरा ते व्यंग पदार्थ सन तेरे खाण पीण वास्ते, इत्थे की मिलता है, इत्थे की मिलता है। ते नंद लाल ने बड़े सुरूर विच आके, बड़े वजद विच आके, बड़ी मस्ती विच आके

बादशाह ने बेनती की, महाराज फिर मेरे से कृपा करो, आशीष दियो कि मैं जिस मार्ग ले चलिया, जिस काम ले चलिया, आप दे गुरु

पर मैं तुहाडा बचन नहीं मोड़ सकदा। मैं जावांगा जरूर तुहाडा बचन मान के, पर अपनी मेहर दा हाथ भी मेरे सिर ते रखना। उचारण करो श्री वाई। बादशाह अदम चल पिया अपनी बादशाही वाल, ते गुरु ने ऐसी लीला रची। जंगल बियाबान दे विच एक सुंदर महल है। अदम बादशाह की वेखदा है, जंगल बियाबान विच एक सुंदर महल है।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाणे आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वडियाई है या गुरमुखां दी वडियाई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हन। जी दान ते भगती लाएं हस्यों लैन मिलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आगोश विच हाजिर होके सानू गुरु दे अमलीक लाल रत्ना की प्राप्ति हुंदी है। इथो जितना भी इस खजाने नू खावीए खर्चीए वरतीए उन्ना ही जिमें होर वध्या होया हुंदा है इस विच कोई घाट नहीं पैंदी। रत्ना रत्न पदार्थ बहु सागर भरिया राम। तो गुरु ने अपार बख्शिश करके ऐसा मौका सानू तंदुरुस्ती विच सावधानी विच बकायमी होशो हवास बख्शिया होया है। तो जितना भी इस तो फायदा उठाया जाए मुस्तफीद होइए फैजजाब होइए वो साडे अपने ही भाग हन। इस शब्द विच सतगुरु जी सानू परमेश्वर दी जात पाक उत्ते परम विश्वास बंधांदे ने। दुनिया अंदर भावे कोई छोटी पद्धर दा इंसान है चाहे कोई वड्डे रुतबे फजीलत रै शरफ बुजुर्गी टाइटल खिताब ते उच्चतम वाला बंदा है हर इंसान मांगत है लोड़कू है मोहताज है इच्छक है। ए वखरी गल है कोई किसे तो मंगे ते फलाने तो ना मंगे लेकिन मांगत जरूर है। और नाल दी नाल कितना ही इंसान चक्रवर्ती शक्तिशाली साहेब जर साहेब जायदाद होवे मित्रां दोस्तां रिश्तेदारियां वाला होवे कारोबार वाला होवे फिर भी वो अपूरन है असमर्थ है। इन्ना कुछ हुंदिया होया भी इंसान नू किसे समर्थ शक्ति पूर्ण व्यक्ति या पूर्ण शक्ति नाल जुड़े रहन दी जरूरत पैंदी है। तो गुरु साहिब जी ने भी इस लोड़ नू महसूसिया है ते गुरु महाराज कहंदे ने कि मैं ते स्वय तजर्बे नाल निज तजर्बे नाल इत्थे ही पहुंचा हां के कितने वड्डे मनुख दी टेक लो आसरा लो कदी ना कदी बिरथा ही जावेगा। मानुख की टेक बिरथी सब जान ते इको ही गल है देवन को एक है पहवान। ओ वड्डा दाता है जेनू
ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਤਲਾਂਦਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਬੇਕਸਾਂ ਰਾ ਯਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ, ਕਾਸ਼ਫ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਤੇ ਸਰਾਰ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਕਾਸ਼ਫ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਸਮ ਫਾਇਲ। ਤੇ ਸਰਾਰ ਸਿਰ ਵਾਹਦ ਸਰਾਰ ਜਮਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬਹੁ ਬਚਨ। ਸਰਾਰ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤੇ ਭੇਦ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲਤਾ ਵਿਚ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਸ਼ਫ ਸਰਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਅੰਤਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹਮਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਲੋਕ ਤਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸੰਤ ਭਗਵਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇਕ ਰੂਹਾਂ ਰੱਬ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਏਡਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੈ। ਰੋਜ਼ੀ ਹਿਰਾਜ ਵਿਲੋਕਤ ਰਾਜ਼ਕ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰੇ। ਰੋਖ ਮੀਨਸ ਰੁਖੀਆਂ, ਰੂਹਾਨ ਜਮਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਰੁਖੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਚਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਚਕਦਾਰ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਜੜਾਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰਿਆਵਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਲੱਕੜੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਈ, ਅਕੜ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਧਾਰਨ ਤਕਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੜੀ ਰਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਆਦਮੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਕੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਚਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲਚਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਆ ਦਿਮਾਗ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿਚ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਆਕੜਦਾ ਨੇ, ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਕੜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜੋ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡ ਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਈ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਵਾ ਇਕ ਛਿੰਨ ਇਕ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਰਚਨਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੁੱਪ, ਮੱਟੀ, ਆਕਸੀਜਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਦਾਰਥ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਬੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਜੋ ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਮੁਨਿਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ ਵੀ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਖ ਰੂਹਾਨ ਕੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਾ ਟਾਰ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਿਆਣ ਰਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੂਰੋ ਮਲਾਇਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾ ਤੇ ਉਹਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਕੱਸ ਜਾਏ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਹਾਜਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਭ ਹਾਜਤਾਂ ਰਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨਿਸ਼ਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਾ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਦਾਤਾ? ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਅਖੁੱਟ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
मुह दूजी नाही ठौर जिसके हम जावे। दुनिया विच असी वेखते हां कि एक मांगत जदों घर आ जाए सदा देवे या किसी दुकान ते कोई पैसा मंगना आ जाए, कई बार वेखन चाहता है मालिक मकान या मालिक दुकान कहता है मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा, वो अगे टुर जाता है। सारे बाजार च गया मुआफ करो बाबा मुआफ करो बाबा ही हुंदी गई, कासा ते कचकोल खाली लिया खाली रहा। किसे प्रवीण पुरुष ने किया कि तू सारे बाजार दुकाना ती लंघे आए, बड़े बड़े इत्थे स्टोर सन, बड़िया बड़िया दुकाना सन, पुश्त दर पुश्त चलन वालिया, ते बड़े बड़े दाते भी बैठे सन उत्थे, पर तेरे कासे अंदर ते दमड़ी भी नहीं है सिक्का भी नहीं है, गया नहीं है तू? उन्हें कहा जी गया तो सा, फिर होया की है? जदों मैं दुआ कीती जदों इल्तजा कीती जदों खाली ठूठा अगे कीता ते उन्हें अगे कहा मुआफ कर बाबा मुआफ कर बाबा। इस तरह मैं सारे घर दे अग्यों दी आया, बीबिया माइया ने खैर तक कोई नहीं पाया, अगे जाओ बाबा जी अगे जाओ इदा कहंदे, मैं अगे तो अगे टुरदा गया, उन्हां दे माफ करो बाबा कहण नाल टुरदा गया, बाजार मुक गया घर मुक गया, इसलिए ठूठा खा लिए। उन्हें कहा सजना जे इस तरह अगे तो अगे जावे ताइयो हाल हुंदा है, पर जे तू किते टिक के किसे एक दे भरवासे उत्ते किते यकीन नाल वासिक यकीन नाल मुस्तकम इरादे नाल बह जांदा ते मैनू यकीन है तेरा ठूठा सखना ना रहंदा। हुंदा भी एवें है, किसे आख्या माफ करो बाबा, कम काज करके फिर आए फिर उत्थे खलोता, तेनू कहा सी जा अगे फिर कम लग गए तू फिर इत्थे खलोता है, गया क्यों नहीं? ओ पक्का मंगता है ते निश्चय वाले आखन लगा मैनू अगे कोई इनविटेशन आया है जी, कोई मदाऊ कीता है किसे ने, किसे निमंत्रण दिता है ते इत्थे अगे आ जा, तुसी तां कही जाओ अगे चल माफ कर, मैं तां हुण तेरा दर मान लिया है तेरी दहलीज मान ली है। अंत फिर ओ कुछ ना कुछ दे के छुटकारा करदा है। गुरु रामदास जी कहंदे ने कि मैनू ए निश्चय हो गया है मुह दूजी नाही ठौर जिस पे हम जावे जावेंगे। तो जब तक कोई मंगता टीठ होके नहीं मंगता, जब तक कोई पूर्ण निश्चय नाल टीठ होके नहीं मंगता, टीठ कहंदे ने तोरी जाए कढ़ी जाए मोड़ी जाए फिर उत्थे ही रहना, जब तक कोई टीठ होके नहीं मंगता उदों तक दाता कुछ नहीं देंदा। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने परमेश्वर नूं भी ऐसा ही एक जगह आख्या डीठ शब्द अलकाप वरत्या है, आडीठ धर्म आडीठ धर्म अत ढीठ करम। वाहिगुरु तू भी अपने इरादे दा बड़ा पक्का है, ये तो मुराद है अत पुख्ता आडीठ धर्म अत ढीठ करम। जाप साहब कई बारी अरदासा करते जाओ मंगते जाओ ते उन्हें जो करना है वो करन कारण समर्थ हो कर दई है। आडीठ धर्म अत ढीठ करम, जब तक किसे मंगते दे विश्वासी दे डिसाइपल दे मौत के दे फिदबी दे विश्वासी मुरीद दे जग्यासु दा अत ढीठ निश्चा ना हो जाए परमेश्वर उत्ते कंप्लीट सरेंडर ना हो जाए आपा समर्पण ना कर देवे उदों तक कई बारी तेनू शक्कां शकूकां दा शुभार दा शक होना पैंदा है शिकार होना पैंदा है। इसलिए गुरु साहिब जी आपके तजर्बाकार जिंदगी विचों कहंदे ने कि परमेश्वर दे दर नूं छड के जाना किते नहीं चाहिदा, क्योंकि मैं निश्चा धार लिया मोहे

प्राणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां।